0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं
1: GAFM
0: 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: ऐ हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
2: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलाण लाए
3: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252576
3: जी हां 2315525786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज।

0: skin. आप सुन रहे हैं GFM 88 Network, सिंध की आवाज.
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4.
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल.
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन.
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा.
2: 0331252576.
3: जी हा, 2315525786.
2: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़.

0: प्रवीण का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GAFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

ईरान ते हमला अपना हरमुज में सामुंडी जहाजनि ते थियल हमलनि जो रद अमल आहिनि। ॿीहर अहिड़ी कार्रवाई थी नतीजा वधीक सख़्त हूंदा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो त खेसि नथो लॻे ईरान में अमेरिका सां विढ़ण जी का ताक़त बची आहे। ईरान सां जंग बंदी मुआदो ख़तम थी वियो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि में वॾे पैमाने ते जंग शुरू थियण जो इम्कान न आहे।

जून 2022 ताईं जे मुलाज़िमनि जो रिकॉर्ड तलब करे वरितो। नेप पारां भर्ती थियल समूरनि तदरीसी ऐं गैर तदरीसी मुलाज़िमनि जूं तालीमी क़ाबिलियतनि जो रिकॉर्ड तलब कयो वियो। तालीम खाते समूरनि लाॻापियल इदारनि ऐं ज़िले तालीमी आफ़िसरनि खे ख़त लिखी छॾियो। ख़त में हिदायत कई वई त हफ़्ते अंदरि रिकॉर्ड माणियो वञे। रिटायर्ड मुलाज़िमनि जो बि समूरो रिकॉर्ड तलब कयो वियो आहे।

0: Care, GFM 88 Network, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छा वहां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहा आयो?
3: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-day ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
2: छा वहां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GAFM 90.4।
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।
2: पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हाँ, 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

अमेरिकी फौज जाबे ॾींहं बि ईरान जे नवे फौजी हंधनि ते हमला। बंदर अब्बास कसम सेरे कोनार्क ऐं चाबहार स्ट्रीट जंग ठिकाणो ऐं रेलवे प्लेन खे निशानो बणायो वियो। अमेरिका सेंट्रल कमांड चयो आहे त अबनई हरमुज में जहाज़नि जी अचवञ यकीनी बणाइण लाइ हमला कया विया। कार्रवाई ईरान जी अगराई जो रदे अमल आहिनि। गुज़िरियल ॾींहं बि अमेरिका ईरान में नवे खां वधीक हदफ़ खे निशानो बणायो हो। ईरानी मीडिया जो चवण आहे त अमेरिकी हमलनि सबबि चाबहार में बिजलीअ जी फराहमी मुतासिर थी आहे। बोशोर सूबे में धमाका ॿुधा विया पर एटमी पावर प्लांट खे को बि नुक़सान नाहे पहुतो।

ईरान ते हमला अबनाए हरमुज में सामुंडी जहाजन ते थियल हमलन जो रदे अमल आहे। बीहर अहिड़ी कार्रवाई ते नतीजा वधीक सख्त हूंदा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त खेस नथो लॻे त ईरान में अमेरिका सां विढ़ण जी का बि ताक़त बची आहे। ईरान सां जंग वधी मुआदो ख़तम थी वियो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि में वॾे पैमाने ते जंग शुरू थियण जो इम्कान आहे। जंग बंदी थियण जो इम्कान न आहे।

बेटी माओ हवाले कया वेंदा गुजरियल रात शहीद आयतुल्लाह खामनाई जो मड़ करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे गाज़ी अब्बास जी मज़ार अंदर न्या वया जनाज़े नमाज़ में 70 लख माण्हू शिरकत कई। जनाज़े नमाज़ में 38 लख माण्हू शिरकत कई। शहीद आयतुल्लाह खामनाई जो मड़ अॼु इराक खां वापसि मुशहद पहुचायो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पज़ीशान जनाज़े नमाज़ में शिरकत करण ते वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो शुक्रियो अदा कयो। सदर मसूद पंहिंजे पैगाम में चयो आहे त ईरान ऐं पाकिस्तान जो अवाम सदाई कुल्हो कुल्हे में मिलाए बीठल रहंदा। असां पाकिस्तान जी हुकूमत ऐं अवाम जी हिमायत खे कॾहिं बि न विसारींदासीं।

अमेरिका के वायदे खिलाफ ही है। धमकियुनि जी कीमत अदा करणी पवंदी। आप महमूद अमेरिकी धमकियुनि सां बेपे ईरानी इंतजाम तहत खोलियो वेंदो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकिर चयो आहे त अमेरिकी धमकियुनि खां नथा डिजूं। अमेरिका हारमोनीज ईरानी इंतजाम ऐं खुदमुख्तियारी तहत खोलियो वेंदो। नेब तालीम खाते जे 1999 खां जून 2022 ताईं जे मुलाज़िमनि जो रिकॉर्ड तलब करे वरितो। नेब पारां भर्ती थियल समूरनि तदरीसी ऐं गैर तदरीसी मुलाज़िमनि जूं तालीमी क़ाबिलियतुनि जो रिकॉर्ड तलब कयो वियो। तालीम खाते समूरनि लाॻापियल इदारनि ऐं ज़िले तालीमी आफ़िसरनि खे ख़त लिखी छॾियो। ख़त में हिदायत कई वई त हफ़्ते अंदरि रिकॉर्ड माणियो वञे। रिटायर्ड मुलाज़िमनि जो बि समूरो रिकॉर्ड तलब कयो वियो आहे। गढ़ी खेरो जे शाखनि में पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज। आबादगारनि जो चवण आहे त बेगारी केनाल मां निकरंदड़ ताज़ा शाख ईदन शाख लुंड माइनर ऐं सीरवा में पाणी घटि आहे। जेको पाणी आहे आपाशी अमलदारनि पैसनि एवज विकिरो करे रहिया आहिनि। नोटिस वठी शाखनि में पाणी फराम करे नुक़सान खां बचायो वञे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां औरत समेत टिनि ॼणनि जा लाश हथ ठरी। मीरवा जे गोठ तारकू बरसात

0: मुरीद शाख में सेहड़वा मानिकरंदड़ डहर माइनर के 20 फुट घारो आर डी चार वट घारे सबब फसल पानी हेठ आबादगारन जो चवण आए ते इतला डेण बावजूद आपाशी अमलो घारो बंद करण लाए नाहे पहुतो पंहिंजी मदद पाण तहत घारे के बंद करण जी कोशिश करे रहा आहियूं।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमाम पखन जे मुकाबले में ते जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: आवाज
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GAFM 90.4।
5: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
6: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
6: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331252576।
6: जी हा 2315525786
5: GAFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
4: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदर रेडियो GFA मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03125252786।
4: जी हाँ 2315525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: में स्ट्रेटेजिक ठिकाणा ने रेलवे प्लन के निशानों बनाया वो अमेरिका सेंट्रल कमांड चवाए तो अबन हुरमस में जहाजन की अचवन यकीन बहन लाय हमला क्या व्या कार्रवाइयों ईरान की अगराई जो रदमल गुजर डी अमेरिका ईरान में नवे का हदफन के निशानों बनाया हो। ईरानी मीडिया चवण है तो अमरीकी अमलों सबब चाबार में बिजली की फराहमी मुतासर थी है। बोशोर सूबे में पिण धमाका बुधा व्या पर एटमी पावर प्लांट के को भी नुकसान ना पहुंतो।

0: ईरान ते हमला में हरमुज में सामुंडी जहाजन ते थियल हमलन जो रद अमल आहिन बीहर अड़ी कार्रवाई थी नतीजा वधीक सख्त हूंदा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त खेस नथो लगे ईरान में अमेरिका सां विढ़ण जी का ताकत बची आहे। ईरान सां जंग बंदी मुआहिदो खत्म थी वियो आहे। बिन्ही मुल्कनि में वॾे पैमाने ते जंग शुरू थियण जो इम्कान न आहे।
1: ईरान जे शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमनाई हज़रत कुटुंब जा मड़ अॼु मस्जिद में इमाम रज़ा जे रोज़े जे आते में मिटी माउ हवाले कया वेंदा। गुज़िर राति शहीद आयतुल्लाह खुमनाई जो मड़ करबला में इमाम हुसैन इस्लाम ऐं गाज़ी अब्बास जी मज़ार अंदर निया विया। जनाज़े नमाज़ में 70 लख खां वधीक माण्हू शिरकत कई। नजफ अशरफ में हज़रत अली जे रोज़े में पिण जनाज़े नमाज़ अदा कई वई। जनाज़े में 38 लख खां वधीक माण्हू शिरकत कई। शहीद आयतुल्लाह खुमनाई जो मड़ अॼु राति खां वापसि मस्जिद पहुचायो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पशान जनाज़े में शिरकत करण ते वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो शुक्रियो अदा कयो। सदर मसूद पशान पंहिंजे पैगाम में चयो आहे त ईरान ऐं पाकिस्तान जो अवाम सदाई कुल्हो कुल्हे में मिलाए बीठल रहंदा। असां पाकिस्तान जी हुकूमत ऐं अवाम जी हिमायत खे कॾहिं बि न विसारींदासीं।

0: अमेरिका के वायदे खिलाफ की ऐं धमकिन जी कीमत अदा करणी पवंदी। अबनार मुल्ज अमेरिकी धमकिन सां बि ईरानी इंतजामन तहत खोलियो वेंदो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकिर कालेबाफ चयो आहे त अमेरिकी धमकिन खां नथा डिजूं। आबना हरमुज़ ईरानी इंतजाम ऐं ख़ुदमुख़्तियारी तहत खोलियो वेंदो।
1: नेव तालीम खाते जे 1999 ईस्वी खां जून 2022 ताईं मुलाज़मनि जो रिकॉर्ड तलब करे वरितो। नेव पारां भर्ती थियल सबूरनि तदस्सी ऐं गैर तदस्सी मुलाज़मनि जूं तालीमी क़ाबिलियतुनि जो रिकॉर्ड तलब कयो वियो। तालीम खाते सबूरनि लाॻापियल इदारनि ऐं ज़िले तालीमी आफ़िसरनि खे ख़त लिखी छॾियो। ख़त में हिदायत कई वई त हफ़्ते अंदरि रिकॉर्ड उमाणियो वञे। रिटायर्ड मुलाज़मनि जो बि समूरो रिकॉर्ड तलब कयो वियो आहे।
0: गढ़ी खेरो जे शाखन में पाणीअ खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज। आबादगारनि जो चवण आहे त बेगारी केनाल मां निकरंदड़ ताजा शाख, ईदन शाख, लुंड माइनर ऐं सीरवा में पाणी घटि आहे। जेको पाणी आहे आपाशी अमलदार पैसनि एवज़ विकिरो करे रहिया आहिनि। नोटिस वठी शाखनि में पाणी फराहम करे नुक़सान खां बचायो वञे।
1: सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि मां औरत समेत टिनि ॼणनि जा लाश चली मीरवा जो घोटु तारकूबर सां कैनाल मां ॼातल शख़्स जो लाश मिलियो। रोड़ीअ में स्टेशन रोड तां ॼातल शख़्स जो लाश इस्पताल मुंतकिल। कुंडरी में पाणी जी टांकी मां ॿिनि ॿारनि जी माउ जो लाश कयो वियो। वारसनि पारां कानूनी कार्रवाई खां इनकार।
0: मुरीद शाख में सेहड़वा मां निकरंदड़ ॾह माइनर खे 20 फुट घारो, आरडी 4 फुट घारे सभु पाणी फसल हेठि। आबादगारनि जो चवण आहे त इतलाह ॾियण बावजूद आपाशी अमलो घारो बंदि करण लाइ नाहे पहुतो। पंहिंजी मदद पार तहत घारे खे बंदि करण जी कोशिश करे रहिया आहियूं।
2: आप सुन रहे हैं नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
4: छावां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252578 6।
5: जी हा, 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: कूल बॉय, साला कूल है बस, कूल कुछ करता ही नहीं,
1: साला कोई बोलता ही नहीं काम का, सब काम करने के बाद कूल जा रहा है।
2: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by D.Y. Muhammad Umar Bughlu Institute of Nursing and Allied Health Sciences, Nilwa Road, near District Jail Defense City, Mirpur Khas.

0: हम कर रहे होते हैं सेगमेंट है हैप्पीनेस फाउंडेशन और ये सेगमेंट आप तक पहुंचाता है. तो हर सेगमेंट में हमारे पास डिफरेंट गेस्ट मौजूद होते हैं लाइनअप ऑन द कॉल लाइव जिनसे हम डिफरेंट स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जो है बात कर रहे होते हैं और उनसे जान रहे होते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि हमें अभी तक नहीं मालूम है. तो आज हम बात करेंगे जी ड्रैगन फ्रूट्स के बारे में और ड्रैगन फ्रूट्स के बारे में बात करने के लिए आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मोहम्मद अमीन. मोहम्मद अमीन पायनियर ऑफ ड्रैगन फ्रूट्स फार्मिंग इन पाकिस्तान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लाइनअप है. खुश आमदीद कहेंगे और कहेंगे अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी. मोहम्मद अमीन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र.
0: मोहम्मद अमीन सबसे पहले तो आपको बहुत सारा खुश आमदीद एंड वेलकम टू द शो कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं
1: जी.
0: थैंक यू सो मच. और आज हम ड्रैगन फ्रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो मोहम्मद अमीन ड्रैगन फ्रूट्स के बारे में हमें बताइए. बहुत सारे लोगों ने आज तक ड्रैगन फ्रूट्स का नाम भी नहीं सुना होगा और बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा. तो आप हमें बताइए कि ड्रैगन फ्रूट क्या है और इसकी असल जो पहचान चांद है या जो इसकी जो फसल है वो कहाँ होती है और ये कैसा फ्रूट है?
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. एक्चुअल ड्रैगन फ्रूट जो है ये कैक्टस खानदान से तल्लक है इसका और ये गजाइयत से भरपूर

0: एक फल है, फ्रूट है और सुपर फ्रूट है। ये वेस्ट अमेरिका और जनूबी अमेरिका से ट्रेवल करता हुआ आज ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में पाया जाता है, जैसे वियतनाम, थाईलैंड, चीन, मलेशिया, बांग्लादेश वगैरह में इसकी बहुत अच्छी काश्त हो रही है। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका आगाज 18 में किया था।
1: 2018 में ड्रैगन फ्रूट का आगाज किया था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये ड्रैगन फ्रूट आपने बताया कि अब बहुत सारी कंट्रीज में मौजूद है, ड्रैगन फ्रूट की शक्ल, इसका कलर, इसका टेस्ट, ये सब कुछ क्या कैसे होता है, क्या होता है?
0: ड्रैगन फ्रूट की शक्ल बहुत खूबसूरत फ्रूट है ये, और इसके मुख्तलिफ वैरायटी हैं, और ये रेड फ्लैश में होता है, व्हाइट फ्लैश में होते हैं, और येलो स्किन व्हाइट फ्लैश होता है। इसमें बिचमार्क इसके जायके और फ्लेवर है।
1: अच्छा, इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स भी मौजूद होते हैं?
0: जी बिल्कुल।
1: ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सबसे अच्छा जो फ्लेवर है खाने के लिहाज से, तो वो कौन सा है? क्या हम इससे डिफरेंट डिशेस भी बना सकते हैं?
0: जी बिल्कुल, तो इससे बाय बाय प्रोडक्ट बन सकती है। बहुत ज्यादा इसमें जैम बनते हैं, जेली बनती है, इसमें बेशुमार जूसेस बनते हैं, इसमें आइसक्रीम बनती है, ये इसके चिप्स बन जाते हैं, और इसका पाउडर सेल होता है, ड्राई पाउडर।
1: ओके,

0: ड्रैगन फ्रूट अगर मैं आपसे पूछूं तो पाकिस्तान में इस वक्त कहां सबसे ज्यादा आसानी से हमें मिल सकता है?
1: ये पाकिस्तान में जी अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले हमारा कसूर में था, उसके बाद हमने इसको हरूनाबाद और कराची में ट्राई किया, उसके बाद झेलम और सियालकोट। मेरा ख्याल है कि मुल्क का कोई ऐसा कोना नहीं जब यहाँ पर अब ये छोटे स्केल पे इसकी फार्मिंग हो रही है, और बड़े स्केल पे तो हम इसको कर रहे हैं कराची में।
0: ठीक हो गया जी। अच्छा, ड्रैगन फ्रूट पाकिस्तान में इसकी काश्त कब और कैसे होती है पाकिस्तान के अंदर?
1: पाकिस्तान

0: किसान ने काश तो इसको जैसे आम फसलों की जब ट्रेन का टाइम होता है उसी वक्त इसको काश करना चाहिए, बाकी मुल्क के तमाम इलाकों में ये हो सकता है।
1: मुल्क के तमाम इलाकों में मौजूद है। ओके जी, अच्छा ड्रैगन फ्रूट की जो काश्त है इसके लिए किस किस्म की मिट्टी और आबो हवा की जरूरत होती है? ये थोड़ा सा बताइएगा।
0: ड्रैगन फ्रूट के लिए जी नरम और भुरभुरी मेरा जमीन जो है वो बहुत अच्छी होती है, और इसके लिए अच्छी निकासी वाली जमीन जो रसीली और भुरभुरी हो वो बेहतर होती है। गर्म मोतदिल आबो हवा इसके लिए मुनासिब है। धूप और पानी का अच्छा निजाम हो तो इसको पानी कम चाहिए होता है जिससे इसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है।
1: अच्छा अगर हम इसको लगाना चाहें लाइक घर में हम इसको अगर लगाना चाहें तो इसकी वो कौन सी किस्म है जो कि हम आसानी से लगा के और वो फिर जल्दी ग्रो कर सकते हैं, कौन सी ऐसी किस्म है ड्रैगन फ्रूट की?
0: तो ये ड्रैगन फ्रूट की किस्में तो जी बहुत लंबा हो जाएगा प्रोग्राम की, 200 के करीब इसकी वैरायटी है। अब हमारे पास 100+ इसकी वैरायटी है जो होम गार्डनिंग के लिए तो लोग मुख्तलिफ जायके ट्राई करते हैं, और कमर्शियल फार्मिंग के लिए उसके जिसकी शेल्फ लाइफ अच्छी हो, फ्रूट साइज अच्छा हो, लोग उस पर फोकस करते हैं। लेकिन होम गार्डनिंग के लिए तो लोग मुख्तलिफ जायकों के मुख्तलिफ फ्रूट जो है ना वो ट्राई करते हैं, तो ये लगाया जा सकता है और बहुत जल्दी फ्रूट देता है। ये चाल के अंदर अंदर फ्रूटिंग किया जाता है। अच्छा हेल्दी अगर पौधा लेते हैं तो चाल के अंदर ही फ्रूटिंग किया जाता है।
1: ओके जबरदस्त। अच्छा एक पौधे को कितना कितने अरसे बाद जो है फल देना शुरू करता है ड्रैगन फ्रूट का जो पौधा है, कितने अरसे बाद देता है
0: फल? ये 1 साल। ये कोई 1 साल में ही फ्रूटिंग पे आ जाता है। अच्छा हेल्दी और कटिंग से तैयार किया हुआ जो इसका पौधा है वो 1 साल के अंदर फ्रूटिंग पे आ जाता है। और ये मई से स्टार्ट होती है इसकी फ्रूटिंग, और स्टेप बाय स्टेप ये फ्रूटिंग करता रहता है और नवंबर लास्ट तक और दिसंबर तक बाल वैराइटीज होती है इनका फ्रूट दिसंबर तक भी अवेलेबल होता है।
1: अच्छा जैसे कि आपने हमें बताया कि ड्रैगन

0: में शामिल था उसे एक महीने का नोटिस मिला। पहले उसने घर में आके किसी को नहीं बताया, रोज तैयार होकर दफ्तर चला जाता। नौकरी खत्म हुई तो नई नौकरी ना मिली, खर्चे वही थे, आमदनी लगी बंदी। अरिबा के लहजे में फर्क आने लगा। उसने गुस्से में कहा कि आपने अपनी कोई सेविंग क्यों नहीं की। फैजाने का कोशिश कर रहा हूँ। और अरिबा कहती कोशिश से बिल नहीं भरते। वही जुमले जो कभी फैजान अपने बाप के बारे में सोचा करता था अब उसके सामने आ रहे थे। दो तीन माह तक नौकरी नहीं मिली, दफ्तर में जो दोस्त साथ खड़े होते थे उन्होंने फोन उठाना कम कर दिया और मिलना मिलाना छोड़ दिया। घर का किराया, बच्चों की फीस, बिजली का बिल, अरिबा की शिकायतें उसके सर पर जमा होने लगी। मालिक मकान ने आके भी धमकी दी कि किराया नहीं दिया तो घर खाली करना होगा। इस रात वो देर तक बैठा रहा। अरिबा ने कहा आप अपने अब्बू से बात करें, अब्बू उनके पास क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, इतने साल रिक्शा चलाया है। फैजान अगले दिन अपने घर गया। अब्दुल रहमान सहन में रिक्शे का टायर देख रहा था और उम्र के साथ साथ उसकी कमर मजीद झुक गई थी और हाथों पर ग्रीस लगी हुई थी। फैजान ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा अब्बू। अब्दुल रहमान के चेहरे पर फौरन मोहब्बत आ गई। उन्होंने कहा आ जाओ बेटे। जैनब किचन से निकली, बेटे को देखकर चेहरे पे पहले जैसी खुशी नहीं थी। फैजान कुछ देर खामोश रहा, फिर बताया मेरी नौकरी चली गई है। अब्दुल रहमान के हाथ रुक गए। उसने पूछा कब? 3 माह हो गए बेटा, बताया क्यों नहीं? फैजान ने नजरें झुका ली, हिम्मत नहीं हुई। अब्दुल रहमान ने कोई ताना नहीं दिया, ये नहीं कहा कि दुनिया का स्टेटस, ना ये कहा अब रिक्शे वाले बाप के पास आया, बस इतना पूछा घर खर्च कैसे चल रहा है। तो फैजान ने कहा कि किराया बोझ बन गया है और फीसें भी अदा नहीं हो पा रही हैं। अब्दुल रहमान बकाया कुछ कहे कमरे में जाकर एक पुराना टीन का डब्बा निकाल लाया, उसमें कुछ नोट थे जो थोड़े थोड़े करके जमा किए हुए थे। उसने वो डब्बा फैजान के सामने रखा, कहा ले जाओ बेटे ये काम आएगा। फैजान ने डब्बे को देखा, कहा अबू ये आपके पैसे हैं। अब्दुल रहमान ने कहा मेरा क्या है, दो वक्त की रोटी चाहिए, तुम अपना घर बचाओ। फैजान
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।

अच्छा जी, घर में काम करते हुए किचन में स्पेशली नाश्ता बनाते वक्त, सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है उस वक्त सबको जल्दी होती है, बच्चों को स्कूल जाना होता है और बड़ों को अपने काम से दफ्तर या रोजगार के सिलसिले में घर से बाहर जाना होता है, खातून खाना जो है उनके लिए जो है नाश्ता तैयार कर रही होती है जल्दी जल्दी में, अक्सर व बेशतर ऐसा होता है। अंडा जब बनाया जा रहा होता है तो अंडे को पैन में चिपकने से कैसे बचाया जाए, ये सवाल अक्सर जो है खवातीन के दिमाग में उठता है। तो अंडे को जो है पैन में चिपकने से कैसे बचाएं, इसके लिए कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आज। जब भी आपने अंडा बनाना हो पहले पैन को जो है अच्छी तरीके से गर्म कर ले, फिर उसमें तेल घी या मक्खन डालें और जब तेल घी गर्म हो जाए उसके बाद उसमें आपने अंडा डालना है। बहुत ज्यादा तेज आंच पर जो है अंडा नहीं पकाना है, दरमियानी आंच बेहतर है। और जैसे ही आप अंडा पैन में डालते हैं तो फौरन से जो है ना उसे चम्मच ना चलाना आपने, ठीक है, बल्कि उसे थोड़ी सी देर उसे पकने दें। और जब वो थोड़ा सा बन जाए उसके बाद जो है आपने उसको जो शेप देनी है वो फिर आपने जो है ना अपना एफर्ट उसमें दिखाना है। पैन को हर इस्तेमाल के बाद बहुत अच्छी तरीके से आपने वॉश करना है, बहुत कम या बहुत ज्यादा तेल इस्तेमाल नहीं करना है आपने। अगर खुदा ना खास्ता अंडा पैन से चिपकने लगे तो आपने आंच कम करनी है और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल दोबारा डाल देना।

देखो जनाब, ये ऐसे टिप्स हैं जिन पर अमल करके आप अंडे को जो है वो पैन में चिपकने से बचा सकते हैं और अंडा बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनेगा। इस वक्त जब यूरोपीय और मगरबी ममालिक सख्त गर्मी की लपेट में है, चीन ने अपने शहरों को बगैर ऐसी ठंडा करने की टेक्नोलॉजी मुतारफ करवा दी है। माहौलियाती आलूदगी ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। इसका हालिया असर यूरोपीय ममालिक और मगरबी ममालिक में नजर आ रहा है, जहां गैर मामूली कयामत खेज गर्मी ने हजारों अफराद की जान ले ली है। ऐसे में जब यूरोपीय ममालिक जहां पहले एसी का रिवाज नहीं था, वहां शहरी एसी खरीदने की दौड़ में लगे हुए और इसके लिए सुपर स्टोर में नहीं है। इन हालात में चीन ने एक ऐसा हैरतअंगेज मनसूबा मुतारफ करवाया जिसके जरिए शदीद गर्मी अब उसके

आप कुछ भी नहीं जानते अम्मी अबू, ऐसे ही कहते हैं ना हम लोग। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी जो है ना हमें अपनी तस्हीबी करनी चाहिए, हमेशा ही जो है ना सामने वाला। एक दिन हजरत

0: सकता। ये चिड़िया इंसान और इसके मुंह में थोड़ी सी जो मट्टी है वो उसके थोड़े से गुना है। अगर ये अपना मुंह खोलकर मट्टी पानी में गिरा दे तो मेरी रहमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्यों ना इंसान आज ही तौबा करे और मैं उसे माफ ना करूं, तो हमेशा जो है ना अल्लाह ताला के मामलात में जो हम नेगेटिव हो जाते हैं, हम अपने तौर पे बहुत कुछ फर्ज करके बैठ जाते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसे होता है और हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये हम सोचते हैं ना और हम कहते भी हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला के मामले में आपको 1001% अनलिमिटेड जो है उन पर यकीन होना चाहिए। 70 माओं से बढ़ के हमें प्यार करते हैं। अगर मौजूदा लाइफ में हमारी जो हम चाह रहे होते हैं वैसा नहीं हो रहा होता तो इसमें उसकी कोई ना कोई मसलहत होती है। अपने सामने इनको बताते चले, अगर प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं लाइव काल के थ्रू, अपने होने का एहसास दिलाना चाहते हैं, 03136615688 डायल कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर भी प्रोग्राम से रिलेटेड कमेंट्स आप ड्रॉप कर सकते हैं। आपके कमेंट्स भी शामिल प्रोग्राम बनाएंगे हम। और उसके बाद जो है एसएमएस का तरीका, मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में एमपी के लिखना, स्पेस देना है, नाम और पैगाम लिखकर रवाना कर देना है 8881 पर। मोहम्मद समी कहते हैं, सलाम आपकी गुल फ्रॉम मीरपुर खास, वेलकम इन अवर शो। आप ही आज आपने स्टोरी बहुत अच्छी सुनाई। अच्छा, स्टोरी इतनी अच्छी थी कि स्टोरी में टाइम गुजरने का पता नहीं चल सका मुझे आज जो है ना, और ब्रेक में भी थोड़ा हम लेट हो गए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद समी, आपको वेलकम। अब्दुल रजाक को भी वेलकम। भलीकार मोहम्मद खान कुम्भार, वफा जमाल कुम्भार, उम्मेद अली कुम्भार आई हालीपोटो स्टॉप से, शो नाई सदा मेहरबानी तमा जी। मोहम्मद ताहिर कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो स्वीट आरजी गुलनाज बहना। वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, आप बताइए क्या हाल अहवाल है। सलाम देना नूर हुसैन तुनियो, चाचा खालिद जुनेजो और बाबू अदी लबड़ो को। और मुझे आज एक कलाम चलाना जी। अच्छा, कौन सा है, लगी तो प्यार जे काबिल, ओके चेक करती हूँ। फरजाना बहार का सॉन्ग है, ओके बहुत शुक्रिया आपका। आशिक खास के लिए अस्सलाम वालेकुम बहन, वेलकम करता हूँ, सेम टू यू अदा, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, सॉन्ग सुनवा दें दिल जी। अच्छा, चेक करती हूँ ये कौन सा सॉन्ग है, अगर मिलेगा जरूर सुनाएंगे। रेहाना खान भक्कर से आपको वेलकम कहेंगे। रेहाना कैसी हैं आप, और सॉन्ग सुनाए फौजिया सुमरो का, ओके अब्दुल रजाक, आई विल ट्राई टू प्ले फौजिया सुमरो। मोहम्मद ताहिर ब्लोच फ्रॉम आप जो है विलेज वलीदात खान से हैं, और सिठारजा से नाइस प्रोग्राम में आपका सलाम देना। हालार विशाल साहब और नूर हसन तुनियो भाई को, अगर ये हमें सुन रहे हैं तो यकीनन वालेकुम अस्सलाम कहा होगा इन्होंने, आपने कहा बहुत अच्छी पैगाम कहानी, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। मोहम्मद ताहिर आपका, आपकी कॉल्स की जानिब भी मूव करते हैं, देखते हैं लाइन पर कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन बात कर रहे हैं। जी अदा, क्या कह, आपने मैसेज किया है, चले मैं चेक करती हूँ पैनल पे, ओके
1: पैनल पे है कि दोस्तों बदलना भी याद करना दो
0: जी।
1: काटड़ी का गुलाम रसूल मरिया अजीज सोलंगी काले पिलाशारी,
0: ठीक है,
1: अजीज जरवार आए अजीज जरवार के सलाम मोहब्बत प्यार है, रेडियो जो दुनिया गुलाम लिसनर आए अजीज सोलंगी
0: ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने कुर्बान खास के लिए लिखा हुआ है मैसेज में, और तो कुछ नहीं लिखा हुआ, बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम
2: जी। वालेकुम सलाम जी, बहन माँ गुलाम रसूल मरी मीरपुर खास काचड़ी का
0: जी। अदा दोस्तों के नाम बताइए।
2: अदा कुर्बान खास के लिए खालिक लाशेरिया, अदा अजीज जरवार, यार मामुसन प्यादी।
0: ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। और जनाब जी, मीरपुर खास एफएमएटीएट नेटवर्क से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सब दोस्त हमारे, और आज आप पे हमने जो है ना बोझ नहीं डाला है टॉपिक का। डेली हम एक टॉपिक लेकर आते हैं, आज आपको टॉपिक से आजाद किया है, अब दोस्तों को याद कर लें आप। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यासमीन, वेलकम कहते हैं आपको, क्या हाल है आपके।
3: अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप सुनाया कैसी हैं।
0: मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ यास्मीन, क्या कहेंगी सब सुनने वालों को, क्या पैगाम देना चाहेंगी।
3: सबसे पहले तो आपकी मैं आज आपने किस्सा सुनाया ना, माशाल्लाह इतना बहुत ही प्यारा, मतलब इतना प्यारा आपने किस्सा सुनाया आज।
0: ये ऐसी हमारे इर्द गिर्द बहुत सी स्टोरीज बिखरी हुई हैं, तो उनमें से ये एक चीज मैंने सेलेक्ट की थी कि जब बच्चे कामयाब हो जाते हैं
3: तो सुनते सुनते आखिर मैं मतलब आंखों में आंसू आए
0: तो वो अपने पेरेंट्स

0: मेहनत को भुला देते हैं, जो वो एफर्ट करते हैं, खुद भूखा रह के अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो ये चीजें भूल जाते हैं बच्चे।
1: बिल्कुल इसी तरह।
0: क्या कहेंगी यास्मीन सब सुनने वाले?
1: मेरी तरफ से उम्मीद अली राजी भाई को और सब सुनने वालों को सलाम। साथ ही आपका परवीन का एक तो कहना कलाम है, माए मिले की लुआ का, ये सुनाइएगा।
0: चलें कोशिश करते हैं, अगर मिलेगा तो प्ले कर देंगे। बहुत शुक्रिया
1: और अल्लाह ताला आपको हमेशा कुछ करे।
0: थैंक यू यास्मीन, सेम टू यू। और जनाब हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी स्टोरीज बिखरी हुई हैं, और मैं एक चीज और आज अपने प्रोग्राम में आप सबसे कहूंगी, लेकिन एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद अपनी बात कंटिन्यू करूंगी। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
0: वेलकम कहेंगे जनाब, कौन बात कर रहा है?
2: रुस्तम अली कुमार बात कर रहा हूँ, गोट सुनू खान से।
0: भलीकार कहते हैं अदा आपको, क्या हाल है आपके? चले जी, इन्होंने तारीफ ही करनी होगी प्रोग्राम की, क्योंकि इनके जब जब टेक्स्ट आते हैं ना तो ये तारीफ कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया अदा, वेलकम कहेंगे आपको भी। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
0: वेलकम कहेंगे, अलीजा बात कर रही है?
3: जी जी अलीजा बात कर रही
0: हूं। कैसी हो अलीजा, आप ठीक हो?
3: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ।
0: क्या कहेंगी अलीजा, आप सब सुनने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगी?
3: कोई मैसेज नहीं, क्योंकि आपके लिसनर एक काम से सुनते हैं दूसरे काम से निकाल देते हैं।
0: नहीं नहीं, कुछ कुछ अमल भी करते हैं। नहीं, ढेरों लिसनर्स में से कुछ लिसनर्स अमल करते हैं।
3: हाँ जी, और अक्सा को सलाम, वो आ नहीं रही है जो मैं।
0: अक्सर शायद जब कभी वो आउट सिटी गई हुई होती है, मैं 2008-09 से मुझे सुन रही है, ये मुझे पता है कि जब भी आउट सिटी जाती है तो ऐसे ही गायब होती है, शायद कहीं गई नहीं हो सकता है।
3: समरीन को सलाम।
0: चलो
3: यास्मीन,
0: यास्मीन
3: नाम एक जैसा है ना, तो कंफ्यूज हो जाती हूँ।
0: सही, चले जी, समरीन यास्मीन अक्सा सबको सलाम, बल्कि तमाम सुनने वालों को इन समेत सबको सलाम। और निदा ठीक है?
3: हाँ जी निदा ठीक है, अभी मेरे पास है।
0: चलो अच्छी बात है, आप दोनों प्रोग्राम सुने और मम्मी को बहुत सारा थैंक्स कहिएगा, आप कहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।
3: और सॉन्ग सुनाइएगा।
0: कौन से सिंगर का?
3: इश्क मुर्शिद अवस्थी।
0: चले आई विल ट्राई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
3: ओके,
0: लिसनर से हमेशा सोचती हूँ और मैं भूल जाती हूँ, मुझे जब मेरा प्रोग्राम खत्म होता है या ऐसे ही कभी फ्री टाइम होता है तो वो बात याद आ जाती है। पहली तो ये कि गर्मी का मौसम है, किसी सायादार दरख्त पे आप जो है दाना और पानी रख दिया करें। अब बहुत घरों में मैंने एक चीज नोट की है, बहुत अफसोस के साथ कहूंगी ये बात, कि कभी ऐसा होता है कि रात में जो है रोटियां बच जाती हैं तो आप लोग उठा के घर से बाहर फेंक देते हैं, ये बेहद गलत हरकत है, बेइंतहा गलत है। इस रिस्क के लिए इंसान बहुत तगोदो करता है, बहुत जतन करता है। आपने थोड़ी सी मेहनत ये करनी है कि उन्हीं रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करके ये छत पे रख दिया करें। कौवा जो है ना, कौवा वो बारीक जो बाजरे के जो छोटे छोटे बारीक दाने होते हैं ना, वो नहीं खा सकता, तो वो ये रोटी जो है ये उसके रिस्क का सबब बन जाएगी। आप शॉपर में डाल के गली में फेंक देते हैं, ये बड़ी ही अजीबोगरीब हरकत है, पहली बात तो ये। दूसरा, अपने बच्चों की जो सेफ्टी आप लोग करेंगे वो कोई और नहीं करेगा। बच्चों की छुट्टियां हैं स्कूल से, बच्चे घर पे होते हैं और माएं घरों के कामों में बहुत ज्यादा मसरूफ होती हैं, गर्मी का मौसम होता है, गुस्सा भी आ रहा होता है, बच्चों को घर से बाहर खेलने भेज देती हैं, माहौल नहीं है, बच्चों को ऐसे बिल्कुल बाहर छोड़ दिया जाए। नहले के आस पड़ोस के जितने भी लोग रहने वाले हैं, बच्चों को उनसे फ्रेंक होने नहीं देना है आपने। आपके बच्चों से जो प्यार, उनकी केयर जो आप करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, तो बच्चों की सेफ्टी के लिए आपने एहतियात करनी है। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे अड़ोस पड़ोस में कहीं जाते हैं, माएं उन्हें कुछ दे देती हैं, जाओ ये पड़ोस में दे आओ, आज हमने बिरयानी बनाई है, जाओ लाके के घर दिया, तो बच्चों को अकेले नहीं भेजा करें। छुट्टियों के दिन बहुत से फैमिली जो है घरों से बाहर गई हुई होती है, मर्द हजरात घरों में अकेले होते हैं, बच्चे अकेले होते हैं, तो ऐसे मौकों पर नाखुशगवार वाकयात पेश आ सकते हैं। अपने बच्चों को स्कूल भी अगर आप भेजते हैं तो वालदेन की जिम्मेदारी है, खुद छोड़ के आए, लेके आए, रिक्शों में भी नहीं ऐसे ही आप अकेले बच्चों को भेज दिया करें। बहुत जगह पे मैंने ड्यूरिंग ट्रेवल एक चीज नोट की है, गर्ल्स को रिक्शे वाले ने अपने बराबर में बिठाया हुआ होता है रिक्शे की सीट पे, पीछे वाली सीट खाली होती है, बहुत गलत है ये चीज। आप अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे तो बाहर वालों को क्या पड़ी है जो आपके बच्चों का ख्याल रखेंगे। माले मुफ्त दिल बेरहम वाली मिसाल यहां मैं कह सकती हूं, तो बहुत एहतियात करें, एहतियात बेहतर होती है।
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: असां खे बेसिकली हिकिड़ो पैगाम ॾिनो आहे, हीउ गोली शायदि मुंहिंजे लाइ हली आहे जेका वञी करे मुंहिंजे माण्हू खे लॻी आहे, हे मूंखे पैगाम ॾिनो वियो आहे त तव्हां जेका अपील में वञो था उहा अपील जेको आहे तव्हां हुन तां हथ खणो। कंहिंजा कमदारनि, कंहिंजा किराए जा कातिलनि जे ट्रिपल मर्डर केस में सरदार चंद जी अबेट में वरी बुरहान चंद ऑन द स्पॉट पियो, उन्हनि पूरो जेको हीउ फ़ैसिलो आहे उहो पहिरीं ॿुधायो त हुननि पंहिंजे ज़िद में हिकिड़े क़िस्म जो हीउ फ़ैसिलो वरितो ऐं सभिनीनि खे आज़ादु करायो। अॼु उहो ई नतीजा पिया था मिलनि त हुननि सभिनीनि खे आज़ादु करे ऐं साॻिया ई माण्हू हथियार खणी करे असांखे ॿुधाइनि था पिया त तव्हां कुझ बि था करे सघो।
1: इक़्तदार चांडू जे कमदारनि सोटनि रियाज़ चांडू खे क़त्ल कयो, टे क़त्ल केस जी अपील करण ते चोथों माण्हू क़त्ल कयो वियो। मिरबाब चांडू ते मुर्ज़ा चांडू, सिकंदर चांडू ऐं ज़मीन ते कम कंदड़ सोट रियाज़ खे क़त्ल कयो। जवाबदार समझनि था त टे क़त्ल केस मां बरी थियण बाद कानून खे कुझ नथो करे सघे, वाके जो ज़िमेवार आख़िर केरु आहे? पुलिस जो कमदारी वारो रवैयो समझ में नथो अचे, इंसाफ़ लाइ जंग विढ़ूं पिया, जान खे ख़तरो आहे। इल्ज़ाम हेठां मुर्ज़ा चांडू पाण खे बेगुनाह करार ॾींदे इल्ज़ाम कूड़ो करार ॾेई छॾियो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ अदालत हेठि कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटीअ जो इजलास, फील्ड मार्शल रासम उरी बलोचिस्तान जे वॾे वज़ीर समेत सिविल ऐं अक्सरी क़यादत जी शिरकत। वज़ीर आज़म दहशतगर्दी ख़िलाफ़ ऑपरेशन ते आगाही ॾिनी वई। भारत सिंध ताज वाइदो फौरी तौर ते बहाल करे पाणी खे हथियार तौर इस्तेमाल करण आलमी कानून जी भञ कड़ी आहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ऐं क्रोएशियन परडे॒ही वज़ीर जी गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस, ईरान इसराइल छिकताण कटाइण लाइ पाकिस्तान किरदार अदा कयो। पाकिस्तान क्रोएशिया में बदतरफ़ी वापार जी आजा कयूं था। क्रोएशियन परडे॒ही वज़ीर चयो त ॿिन्ही मुल्कनि जा लाॻापा गॾियल एतराम एतमाद जी बुनियाद ते ॿधल आहिनि। ॿिन्ही मुल्कनि सहकार जा नवां मौक़ा ॻोल्हण ते इतफ़ाक़ कयो। टेक्नोलॉजी, ख़िदमतनि, सिहत ऐं सियासत में सहकार जा इम्कान मौजूद आहिनि। हिकु तरफ़ सुप्रीम लीडर जे शहीद आयतुल्ला खमेनेई जो आख़िरी रस्मूं जारी आहिनि त ॿिए तरफ़ ईरान ते अमरीकी हमला, हमलनि में 14 ईरानी शहीद। गुलिस्तान सूबे जे अकला शहर में रेलवे पुल ते 7 मिज़ाइल फायर कया विया। मशहद तरफ़ वेंदड़ ॿिनि पुलनि ते हमला, अमरीका सेंट्रल कमांड चयो आहे त फिज़ाई हमिलो मरेलो कयो वियो। ईरानी के दिफ़ाई निज़ाम मिज़ाइल ड्रोन ज़खीरनि ते हमला कया विया। बंदर अब्बास, कसम, सिरक, कोनार्क ऐं चंबार में स्ट्रेटेजिक ठिकाणनि रेलवे पुलनि समेत 90 हंधनि ते निशानो बणायो वियो। ईरान जो अमरीका खे भरपूर जवाब, खिते में अमरीकी फ़ौजी अॾनि ते मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला। पासदारनि इंकलाब जो चवण आहे त कुवैत ऐं बहरीन में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। कुवैत में अमरीकी फ़ौजी कैंप रफजान ऐं अल इस्लाम एयरबेस खे निशानो बणायो वियो। बहरीन में अल जफीर ऐं शेख ईसा एयरबेस ते हमला कया विया। कुवैत ऐं बहरीन पारां ईरानी मिज़ाइल ड्रोन किरण जी दावा। ईरान ते हमला, आबन हुरमस में सामूंडी जहाज़नि ते थियल हमलनि जो रद अमल आहे। ॿीहर अहिड़ी कार्रवाई थी त नतीजा वधीक सख़्त हूंदा। अमरीकी सदर ट्रंप चयो त खेसि नथो लॻे त ईरान में अमरीका सां विढ़ण जी का ताक़त बची आहे। ईरान सां जंगबंदी मुआदो ख़त्म थी वियो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि में वॾे पैमाने ते जंग शुरू थियण जो इम्कान नाहे। अमरीका खे वाइदनि जी भंजकड़ी ऐं धमकियुनि जी क़ीमत अदा करणी पवंदी। आपने हुरमज़ अमरीकी धमकियुनि सां पर न ईरानी इंतज़ाम तहत खोलियो वेंदो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाक़िर कालिबाद चयो आहे त अमरीकी धमकियुनि खे नथा ॾिजूं। आपने हुरमज़ ईरानी इंतज़ाम ऐं ख़ुदमुख़्तारी तहत खोलियो वेंदो। नेब तालीम खाते जो 1999 खां जून 2020 ताईं जे मुलाज़मनि जो रिकार्ड तलब करे वरितो। नेब पारां भर्ती थियल समूरनि तदर्सी ऐं गैर तदर्सी मुलाज़मनि जो तालीमी क़ाबिले जो रिकार्ड तलब कयो वियो। तालीम खाते समूरनि लाॻापियल इदारनि ऐं ज़िले तालीमी आफ़िसरनि खे ख़त लिखी छॾियो। ख़त में हिदायत कई वई आहे त हफ़्ते अंदरि रिकार्ड उमाणियो वञे। रिटायर्ड मुलाज़मनि जो बि समूरो रिकार्ड तलब कयो वियो आहे। गढ़ी खेरो जे शाखनि में पाणी कोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज। आबादगारनि चवण ते बेगारी केनाल मां निकिरंदड़ ताज़ा शाख, किदन शाख, लुंड माइनर ऐं सेरवा में पाणी घटि आहे। जेको पाणी आहे आबाशी अमलदार पैसनि वज़ वेको करे रहिया आहिनि। नोटिस वठी शाखनि में पाणी फराहम करे नुक़सान खां बचायो वञे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि मां औरत समेत टिनि ॼणनि जा लाश हथ। थरी मीरवा जे ॻोठु तारकोबर सां कैनाल मां निकितल शख़्स जो लाश मिलियो। रोड़ी में स्टेशन रोड तां निकितल शख़्स जो लाश हथ। इस्पताल मुंतकिल। कुंडरी में पाणी जी टांकी में ॿिनि ॿारनि जे माउ जो लाश हथ कयो वियो।

0: वारसन सियाल समाज कारकुनन डीसी ऑफिस वारो धरणो हणी रोड बंद कर छो गुजारिश चो तो इंतजामिया घुरी पियल नौजवान की गोला में मदद नथी करे नोट्स वी नोटिस वी नौजवान की गोला
1: सोलर ऐं बैट तमाम पखन जे मुकाबले में ये जबरदस्त हवा रॉयल इन्वर्टर जिंदगी भर
2: एलोवेरा प्रोटीन फॉर्मूला के साथ बनाए बाल मजबूत बेहतर कीमत में पूरे 50 रुपए की बचत के साथ लाइफ बॉय शैम्पू
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: छा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
6: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
6: ऐं हाँ गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 0331252578 6।
6: जी हाँ 2131525786
5: GAFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में।

0: डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सभिनीनि खे आज़ाद करायो. अॼु उहो ई नतीजा पिया था मिलनि त हुननि सभिनीनि खे आज़ाद करे ऐं उन साॻिया ई माण्हू हथियार खणी करे असांखे ॿुधाइनि था पिया त तव्हां कुझु बि था करे सघो.
1: इक़्तदार चांडू जे कमदारनि सोटनि रियाज चांडू खे क़तल कयो. टे क़तल केस जी अपील करण ते चोथों माण्हू क़तल कयो वियो. मिरबाब चांडू ते मुर्ज़ा चांडू सिकंदर चांडू ऐं ज़मीन ते कम कंदड़ सोट रियाज खे क़तल कयो. जवाबदार समझनि था त टिणे क़तल केस मां परी थियण बाद कानून खे कुझु नथो करे सघे. वाकिए जो ज़िमेवार आख़िर केरु आहे? पुलिस जो कमदारी वारो रवैयो समझ नथो अचे. इंसाफ़ लाइ जंग विढ़ूं पिया. जान खे ख़तरो आहे. इल्ज़ाम हेठां मुर्ज़ा चांडियो पाण खे बेगुनाह करार ॾींदे इल्ज़ाम कूड़ो करार ॾेई छॾियो. वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ अदालत हेठि कोइटा में सूबाई अपेक्स कमेटीअ जो इजलास. फील्ड मार्शल रासम उरी बलोचिस्तान जे वॾे वज़ीर समेत सिविल ऐं अक्सरी क़यादत जी शिरकत. वज़ीर आज़म दहशतगर्दी ख़िलाफ़ ऑपरेशन ते आगाही ॾिनी वई.

भारत सिंध ताज वायदो फौरी तौर ते बहाल करे पानी के हथियार तौर इस्तेमाल करण आलमी कानून की भंग कड़ी है। नायब वजीर अजम इसाकार ए क्रोएशियन फेडरेशन वजीर गडियल प्रेस कॉन्फ्रेंस ईरान इसराइल चिकटान कटाने लाइ पाकिस्तान किरदार अदा कर पाकिस्तान क्रोएशिया में बदतरफी व्यापार की आजा क्यों था। क्रोएशियन फेडरेशन वजीर बिन्हीं मुल्क लागापा गडियल एतराम एतमाद के बुनियाद से बदल आए बिन्हीं मुल्क सहकार के नवा मौका खोलने के इतफाक कर टेक्नोलॉजी खिदमत सेहत ए सियासत में सहकार के इम्कान मौजूद है। एक तरफ सुप्रीम लीडर जो शहीद आयतुल्लाह खमेनी जो आखिरी रस्मों जारी है तो बे तरफ ईरान ते अमरीकी हमला हमलन में 14 ईरानी शहीद गुलिस्तान सूबे के अकला शहर में रेलवे पुल ते 7 मिसाइल फायर किया व्या। मशहद तरफ वेंदड़ बिन पुलन ते हमला अमरीका सेंट्रल कमांड चवाए तो फिजाई हमलो मरेलो कर ईरानी के दिफाई निजाम मिसाइल ड्रोन जखीरन से हमला किया व्या। बंदर अब्बास कसम सिरक कोणार्क चंबार में स्ट्रेटेजिक ठिकाने रेलवे पुलन समेत 90 हंधन से निशानो बनाया वो। ईरान जो अमरीका के भरपूर जवाब खिते में अमरीकी फौजी अड्डन से मिसाइल और ड्रोन हमला पासदार इनकलाब जो चवण है कोवैत बेरीन में अमरीकी अड्डन के निशानो बनाया वो। कोवैत में अमरीकी फौजी कैंप रफजान अल इस्लाम एयरबेस के निशानो बनाया वो। बेरीन में अल जफीर शेख ईसा एयरबेस से हमला किया व्या। कोवैत बेरीन पारा ईरानी मिसाइल ड्रोन किरण की दावा। ईरान से हमला आबना हुरमस में सामुंडी जहाज थियल हमलन जो रद्द अमल है बीहर अड़ी कार्रवाई थी तो नतीजा सख्त हूंदा। अमरीकी सदर ट्रंप खेस नथो लगे तो ईरान में अमरीका से वेहण की का ताकत बची है। ईरान से जंग बदी मुआदो खत्म थी वो है बिन्हीं मुल्क में वे पैमाने से जंग शुरू थे इम्कान ना है। अमरीका के वायदन की भंजकड़ी या धमकियों की कीमत अदा करनी पवी अपने हुरमज अमरीकी धमकियों से पर न ईरानी के निजाम तहत खोलो वेंदो। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाद है तो अमरीकी धमकियों के नथा डूं अपने हुरमज ईरानी निजाम में खुदमुख्तारी तहत खोलो वेंदो। नेब तालीम खाते जो 1999 का जून 2020 तई जे मुलाजमन जो रिकॉर्ड तलब कर वरतो। नेब पारा बासी चल समूरन तदर्सी या गैर तदर्सी मुलाजमन जो तालीम काबिले जो रिकॉर्ड तलब किया वो। तालीम खाते समूरन लागापल इदारन ए जिले तालीमी आफिसरन के खत लिखी छो खत में हिदायत कई वही है तो हफ्ते अंदर रिकॉर्ड उमाणियों वहीं रिटायर्ड मुलाजमन जो समूर रिकॉर्ड तलब किया वो है।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: तरक्की लाए सोचे रहे आयो
4: तपोए GAFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
4: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो।

0: ज़ीरो
1: डबल थ्री वन टू फाइव टू फाइव सेवन एट सिक्स
0: जी हाँ बुड़ी 381 पंजवी पंजवी 786
1: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

0: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो जी।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
2: जी हा, 2315525786।
1: जीए नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन,
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
2: जी हा, 2315525786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क,
2: सिंध जो आवाज़।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM
0: 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.3।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: छावां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
1: जी हा, 2315525786।
0: GAFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

पीओ कोर्ट भरसा नारेज अपराधी की बिन धुरियन में सगावती तकरार तां जेड़ो फायरिंग में सस नू समेत पंज जणा कतल एक बाड़ी समेत ब जणा जख्मी कोर्ट साख नारेज में नारेज अपराधी की बिन धुरियन में जेड़े दौरान एक धुरजो फतेह मोहम्मद ए संदस पुट राजा नारेजो मारज गया फायरिंग में भी धुरजो सैराब नारेजो ब औरतू जीजा ए संदस नू रापिया नारेजो मारज व्य फायरिंग में बारडे अली रजा नारेजो समेत ब जणा जख्मी थी पिया पंजन जणन के कतलपात इलाके में सख्त चिकताण वारी सूरतहाल पुलिस नफरी वाके वारे हंध पहुतल सूरतहाल ते जाब्ते लाए मुख्तलिफ थानन ता इजाफी नफरी भी तलब कई वही।

0: असांखे बेसिकली पैगाम ॾिनो वियो हीउ गोली शायदि मुंहिंजे लाइ हली आहे जेका वञी करे मुंहिंजे माण्हू खे लॻी आहे हे मूंखे पैगाम ॾिनो वियो आहे त तव्हां जेका अपील में वञो था उहा अपील जेको आहे तव्हां हुन तां हथु खणो तव्हां ॾिसो त कंहिंजी अबेटमेंट ते थिए थो पियो कंहिंजा कमदारनि कंहिंजा किराए जा कातिलनि जी माण्हू तव्हांखे ख़बर आहे असांजे ट्रिपल मर्डर केस में सरदार चंद जी अबेटमेंट रही बुरहान चंद ऑन स्पॉट रहियो पूरो जेको हीउ फ़ैसिलो आहे उहो पहिरीं ॿुधायो त हुननि पंहिंजे ज़िद में हिकड़े क़िस्म जो हीउ फ़ैसिलो वरितो ऐं सभिनीनि खे आज़ादु करायो अॼु उहो ई नतीजा पिया था मिलनि त हुननि सभिनीनि खे आज़ादु करे ऐं उहे साॻिया ई माण्हू हथियार खणी करे असांखे ॿुधाईंदा पिया त तव्हां कुझु बि था करे सघो
1: मेहर भरसा चांडिया बिरादरी जी पिंथुरियुनि में झेड़े दौरान उमेर बाप चांडिया जो नौजवान सोठ कतल उमेर बाप पारां टीणे कतल केस मां बरी थियल जवाबदार मुर्चा चांडियो ऐं ॿियनि मथां सोठ रियाज चांडियो जे कतल जो इल्ज़ाम वाके बहादुरियुनि में सख़्त चिकताण बरकरार उमेर बाप चयो रबाब चांडियो केटीए न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त तीअणे कतल केस जी अपील करण ते चोथो माण्हू कतल कयो वियो मुर्ज़ा चांडियो सिकंदर चांडियो ऐं ॿियनि ज़मीन ते कम कंदड़ सोट रियाज़ खे कतल कयो आहे सभई सरदारनि जा कमदार आहिनि जवाबदार समझनि था त टियणे कतल केस मां परी थियण बाद कानून खे कुझु नथो करे सघे वाके जो ज़िमेवार आख़िर केरु आहे पुलिस जो कमदारी वारो रवैयो बि समझ में नथो अचे जान खे बि ख़तरो आहे कतल जे इल्ज़ाम हेठायल मुर्ज़ा चांडियो बि वीडियो बयान जारी करे उमेर बाप चांडियो जे इल्ज़ामनि खे रद्द करे छॾियो आहे।

0: असांजो भरवारो पाड़ेसरी दहशतगर्दीअ जी कार्रवाइयुनि में मुलविस आहे। दहशतगर तंजीमनि खे हथियार फराहम कया पिया वञनि। दहशतगर्दी में अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल थी रही आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो क्वेटा में नेशनल एक्शन प्लान जी सूबाई एपेक्स कमेटी जे इजलास खे ख़िताब। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर बलूचिस्तान जे गवर्नर ऐं वॾे वज़ीर समेत ॿियनि अख़्तियारनि जी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ खे बलूचिस्तान जे सिक्योरिटी सूरतहाल ऐं दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जारी ऑपरेशन ते ब्रीफिंग ॾिनी वई। इजलास खे ख़िताब कंदे शहबाज़ शरीफ चयो त वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ इजलास खे ख़िताब कंदे चयो त बलोचिस्तान में आख़िरी दहशतगर्द जे ख़ात्मे ताईं दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग जारी रहंदी। पाकिस्तान जे हथियारबंद फ़ौज जे आफ़िसरनि ऐं जवाननि मुल्क जे दिफ़ा लाइ लाज़वाल क़ुर्बानीूं ॾिनियूं आहिनि। सियासी ऐं अस्करी क़यादत जो इहो अज़म आहे त असांखे मुल्क मां दहशतगर्दी जो ख़ात्मो करणो आहे ऐं दहशतगर्दी जे फितने जे मुकमल ख़ात्मे लाइ समूरा वसीला कुतुब आंदा वेंदा। भारत
1: जयबस रेडियो सही टाइम पे आई हो। बताओ आज इतनी परेशान क्यों हो?
2: हाँ, ऑफिस में आज बहुत बुरा दिन गुजरा।
1: चल अब तुम रिलैक्स करो।
2: मेरा दिन तो फिक्स हो गया, अब तुम्हारा दिन फिक्स कर। तुम हेल्प के लिए मुझे कॉल कर लेती ना।
1: मुझे पता था तुम कर गया जाओगी। बिन बोले समझ जाने वाली दोस्ती लिप्टन, दोस्ती जितनी स्ट्रॉन्ग।
0: सियासत में सरकार जा इम्कान मौजूद आहिनि। हिकु तरफ़ शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई जूं आख़िरी रस्मूं, ॿिए पासे ईरान ते अमरीकी हमला। वधीक 14 ईरानी शहीद। ईरान जे गुलिस्तान सूबे जे अकला शहर में रेलवे पुल ते 7 मिसाइल फायर कया विया। मशहद तरफ़ ईंदड़ ॿिनि पुलनि ते हमला। अमरीकी सेंटकॉम जो चवण आहे त गुज़िरियल राति ईरानी दिफ़ाई निज़ाम मिज़ाइल ऐं ड्रोन ज़खीरनि ते हमला कया विया। बंदर अब्बास कसम।
3: आप सुन रहे थे जीएएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोच
1: जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जी एफ एम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 0331252576।
1: जी हा 2315525786
0: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4। दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आवाज की डोर से बंधा हुआ
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पीजो गोट बरसा जी बिंद तकरार छेड़ो, पायरल एक बाड़े समेत बजना जख्मी। गोठ साख नारे जो में नारे जा अपराधी जी बिन धुरियन में झेड़े दौरान एक धुर जो फतेह मोहम्मद ए संदस पुट राजा नारे जो मार जी व्या। फायरिंग में बी धुर जो सोराब नारे जो बोटू जीजा ए संदस नू राबिया नारे जो मार जी वयूं। फायरिंग में बाड़े अली रजा नारे जो समेत बजणा जख्मी थी पिया। पंजन जणन जे कतल बाद इलाके में सख्त छिकताण वारी सूरत हाल। पुलिस नफरी वाके वारे हंध पहुतल। सूरत हाल ते जाब्ते लाइ मुख्तलिफ़ थाणनि तां इज़ाफ़ी नफ़री बि तलब कई वई।

0: अलावा हमारी जमीनों पर ट्रैक्टर चल रहे थे जिस पर इन वैशियों, कातलों, दरिंदों, मुर्तजा चांडियों, सिकंदर चांडियों तकरीबन 10 हथियारबंदों ने अंधाधुंध फायरिंग करके ट्रिपल मर्डर केस के मशीन रियाज चांडियों मेरे कजन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। फिर सवाल करती हूँ सबका जिम्मेदार कौन है। मैं आईजी साहब से अपील करती हूँ, मैं हायर अथॉरिटीज से अपील करती हूँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करती हूँ कि हम कानून और आईन के आस्ते एक जंग लड़ रहे हैं और पहले भी हमने अपने 3 प्यारों के जनाजे उठाए, आज मेरे नौजवान कजन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है।
1: ख़बर पीअण में मुंहिंजे भाउ सता जो मुंहिंजो सिकंदर चांडे जो नालो आहे बेगुनाह अञा पियो।
0: इस सब का जिम्मेदार कौन है? सिंध पुलिस का इसमें मनफी रवैया, सिंध पुलिस का इसमें कमजारी वाला रवैया मुझे समझ नहीं आ रहा। आईजी साहब से गुजारिश करती हूँ कि इस पे नजरसानी करें और स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इस मामले को रोका जाए। हमारी जानों को खतरा है, हमारे गांव में आज फायरिंग करके हमारे नौजवान कजन को कत्ल कर दिया गया।
1: एसएसपी साहब आईजी साहब से गुजारिश है कि जांच करे शफाफ है जबकि दोही जरूर ना लगा।
2: मेयड़ भरसा चांडिया बिरादरी जी बिंदुरियन में जड़े दौरान उमेर रुबाब चांडियो जो नौजवान सोट कतल। टीणे कतल केस में भरी थियल जवाबदार मुर्तजा चांडियो समेत 12 जवाबदार खिलाफ केस दाखिल। उमेर रुबाब चांडियो टीणे कतल केस की अपील

ते चौथो माण्हू क़तल कयो वियो। मुर्ज़ा चांडियो, सिकंदर चांडियो ऐं ॿियनि ज़मीन ते कम कंदड़ सोट रियाज खे क़तल कयो आहे। जवाबदार समझनि था त टियणे क़तल केस मां बरी थियण बाद कानून खे कुझु नथो करे सघे। वाके जो ज़िमेवार आख़िर केरु आहे? पुलिस जो कमदारी वारो रवैयो बि समझ में नथो अचे। जान खे बि ख़तरो आहे। क़तल थियल रियाज चांडियो जे भाउ एहसान चांडियो जी फरियाद ते मुर्ज़ा चांडियो, अब्दुल सत्तार चांडियो, सिकंदर चांडियो ऐं ज़ुल्फ़िकार चांडियो समेत 12 जवाबदारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल। पुलिस ॿिनि जवाबदारनि मोहम्मद परियल ऐं सिफ़र चांडियो समेत 10 ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वरितो।

0: असांजो उभर वारो पाड़ेसरी दहशतगर्दी जी कार्रवाईनि में मुलविस आहे। दहशतगर्द तंज़ीमनि खे हथियार फराहम कया पिया वञनि। दहशतगर्दी में अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल थी रही आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो क्वेटा में नेशनल एक्शन प्लान जी सूबाई एपेक्स कमेटी जे इजलास खे ख़िताब। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, बलोचिस्तान जे गवर्नर ऐं वॾे वज़ीर समेत ॿियनि अख़्तियारनि जी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ खे बलोचिस्तान जी सिक्योरिटी सूरतहाल ऐं दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जारी ऑपरेशन ते ब्रीफिंग ॾिनी वई। इजलास खे ख़िताब कंदे शहबाज़ शरीफ चयो त वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त बलोचिस्तान में आख़िरी दहशतगर्द जे ख़ात्मे ताईं दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग जारी रहंदी। पाकिस्तान जे हथियारबंद फ़ौज जे आफ़िसरनि ऐं जवाननि मुल्क जे दिफ़ा लाइ लाज़वाल क़ुर्बानीूं डि॒नियूं आहिनि। सियासी ऐं अस्करी क़यादत जो इहो अज़म आहे त असांखे मुल्क मां दहशतगर्दी जो ख़ात्मो करणो आहे ऐं दहशतगर्दी जे फितने जे मुकमल ख़ात्मे लाइ समूरा वसीला कुतुब आंदा वेंदा। भारत सिंतास मुआदो फौरी तौर बहाल करे पाणी खे हथियार तौर इस्तेमाल करण आलमी कानून जी पजकड़ी आहे। नायब वज़ीर आज़म साकदार ऐं क्रोशियन परडेही वज़ीर जी गडि॒यल प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान इसराइल ठिकाण घटाइण लाइ पाकिस्तान किरदार अदा कयो। पाकिस्तान ऐं क्रोशिया में बेतरफ़ी वापार जी आजियां कयूं था। क्रोशियन परडेही वज़ीर चयो त ॿिन्ही मुल्कनि जा लाॻापा घरियल एतराम ऐं एतवाद जी बुनियाद ते ॿधल आहिनि। ॿिन्ही मुल्कनि सहकार जा नवां मुखिया ॻोल्हण ते इतफ़ाक़ कयो। टेक्नोलॉजी, ख़िदमतनि, सिहत ऐं सियासत में सहकार जा इम्कान मौजूद आहिनि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GAFM, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: छावा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 0331252576।
1: जी हा 2315525786।
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: मेरा
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मुल्क में थींदड़ दहशतगर्दी में ओभरवारो पाड़ेसरी मुल्क मुलविस आहे। दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन इस्तेमाल थी रही आहे। सभई गॾिजी फितने खे ख़त्म कंदासीं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो क्वेटा में नेशनल एक्शन प्लान जी सूबाई एपेक्स कमेटी जे इजलास खे ख़िताब। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, बलूचिस्तान जे गवर्नर ऐं वॾे वज़ीर समेत ॿियनि इख़्तियारनि जी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ खे बलूचिस्तान जी सिक्योरिटी सूरतहाल ऐं दहशतगर्दी जारी ऑपरेशन ते ब्रीफिंग डिनी वई। इजलास के खिताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो त बलोचिस्तान में आख़िरी दहशतगर्द जे ख़ात्मे ताईं दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग जारी रहंदी। पाकिस्तान जे हथियारबंद फ़ौज जे आफिसरनि ऐं जवाननि मुल्क जे दिफ़ा लाइ लाज़वाल क़ुर्बानीयूं डि॒नियूं आहिनि। सियासी ऐं अस्करी क़यादत जो इहो अज़म आहे त असांखे मुल्क मां दहशतगर्दी जो ख़ात्मो करणो आहे ऐं दहशतगर्दीअ जे फितने जे मुकमल ख़ात्मे लाइ समूरा वसीला कुतुब आंदा वेंदा। भारत सिंध तास माहिदो फौरी तौर बहाल करे। पाणी खे हथियार तौर इस्तेमाल करणु आलमी कानून जी भञकड़ी आहे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार जी क्रोशियन परडे॒ही वज़ीर सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसाक डार चयो त ईरान इसराइल चिताण घटाइण लाइ पाकिस्तान किरदार अदा कयो। क्रोशिया सां बेतरफ़ी वापार जी अजिया कयूं था। क्रोशियन परडे॒ही वज़ीर चयो त ॿिन्ही मुल्कनि जा लाॻापा गडि॒यल एतराम ऐं एतमाद जी बुनियाद ते ॿधल आहिनि। ॿिन्ही मुल्कनि सहकार जा नवां मौकिया ॻोल्हण ते बि इतफ़ाक़ कयो आहे। अमरीका जंगबंदी जे ख़ात्मे वारे ऐलान खां पोइ ईरान मथां हमला तेज़ करे छॾिया। मिसाइलनि हमलनि में वधीक 14 ईरानी शहीद थियण जी तस्दीक। ईरान जे गुलिस्तान सूबे जे अकला शहर में रेलवे पुल ते 7 मिसाइल फायर कया विया। मशहद तरफ़ ईंदड़ ॿिनि पुलनि ते बि हमला। अमरीकी सेंटकॉम जो चवण आहे त ईरानी दिफ़ाई निज़ाम मिसाइल ऐं ड्रोन ज़खीरनि ते हमला कया विया आहिनि। बंदर अब्बास, कसम, सरीक, कोनार्क ऐं चाबहार में स्ट्रेटेजिक थाकनि ऐं रेलवे पुलनि समेत 90 हंधनि ते निशानो बणायो वियो। ईरान जो जवाबी वार। खिते में अमरीकी फौजी अड्डनि ते मिसाइल ऐं ड्रोन हमला। पासदारनि इंकलाब मूजिब कुवैत ऐं बहरीन में अमरीकी अड्डनि खे निशानो बणायो वियो। कुवैत में अमरीकी फौजी कैम्प ऐं एयरबेस खे निशानो बणायो। बहरीन में अल जफीर ऐं शेख ईसा एयरबेस ते हमला। कुवैत ऐं बहरीन पारां ईरानी मिसाइल्स ऐं ड्रोन तबाह करण जी दावा। ईरान ते हमला। अबनाए हुर्मुस में सामूंडी जहाज़नि ते थियल हमलनि जो रद अमल आहिनि। ॿीहर अहिड़ी कार्रवाई थी त नतीजा वधीक सख़्त हूंदा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त खेसि नथो लॻे ईरान वटि विढ़ण जी का ताक़त बची आहे। जंगबंदी मुआहिदो ख़तम थियण बावजूद ॿिन्ही मुल्कनि में वॾे पैमाने ते जंग शुरू थियण जो इम्कान न आहे। अमरीका खे वायदनि जी बजकड़ी ऐं धमकियुनि जी क़ीमत अदा करणी पवंदी। अबनाए हुर्मुस अमरीकी धमकियुनि सां बि ईरानी इंतज़ामनि तहत खोलियो वेंदो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर पाकर कालिबाफ चयो आहे त अमरीकी धमकियुनि खां नथा डिजूं। अबनाए हुर्मुस ईरानी इंतज़ाम ऐं ख़ुदमुख़्तारी तहत खोलियो वेंदो।

0: पीछे गोट परसान आरिजा बिरादरी जी बिन धुरियन में सगावती तकरार था जेड़ो फायरिंग में सस नू समेत पंज जणा कतल एक बाड़े समेत ब जणा जख्मी गोट साक नारेजो में नारेजा बिरादरी जी बिन धुरियन में जेड़े दौरान एक दुर्जो फतेह मोहम्मद ए संदस पुट राजा नारेजो मारजी विया फायरिंग में बी दुर्जो सोराब नारेजो औरतू जीजा ए संदस नू राबिया नारेजो मारजी व्यू फायरिंग में बाड़े अली रजा नारेजो समेत ब जणा जख्मी थी पिया पंज जणन के कतल बाद इलाके में सख्त चिकताण वारी सूरतहाल बारे हंध पोतल सूरतहाल ते जब्त लाए मुख्तलिफ थाणनि तां इज़ाफ़ी नफ़री भी तलब कई वई
1: आज सुबह हमारी ज़मीनों पर ट्रैक्टर चल रहे थे जिस पर इन वैशियों कातलों दरिंदों मुर्तजा चांडियों सिकंदर चांडियों तकरीबन 10 हथियारबंदों ने अंधाधुंध फायरिंग करके

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: Mehran ki sakafat se gunda hua. Awaaz ki door se banda hua.
3: GFM 88 Network. सिंध की आवाज
4: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।